0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाज।
1: Are you familiar with the lyrics of Pehli Nazar, also Atif Aslam?
0: पहली नजर में ऐसा

मैं तेरा हाय, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। ओके एवरीबॉडी जस्ट लिसनिंग। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। टुगेदर एवरीबॉडी नाउ।